0: होटल आला, कोई संतरी जी, कोई मंत्री जी, कोई या बोल, कोई वाह बोल, मैंने उठे ले गया, मैंने भटे ले गया, मैंने रुपया खिलायो, मैंने बड़ो धमकायो, मैं फेर भी ना मानी, मैंने मन में थी ठानी।
1: तू काय बोली, तू काय बोली,